0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: सुनिए ना, आइए हम लोग आने में छह बजे
2: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एस आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: निशुल्क आँखा शिविर हुने बारे सूचना सानिमा बैंक लिमिटेड पुतली बजार शाखा स्याङ्जा र हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको प्राविधिक सहयोगमा निम्न मिति समय र स्थानमा निशुल्क आँखा शिविर र मोतियाबिन्दु शिविर सञ्चालन हुन गइरहेकाले सम्पूर्ण मोतियाबिन्दु वा अन्य आँखाका बिरामीहरूले लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। पहिलो दिन असार 7 गते कार्यक्रम आँखा स्क्रिनिङ क्याम्प स्थान कालिका सामुदायिक अस्पताल भिरकोट नगरपालिका हेलु स्याङ्जा। दोस्रो दिन असार 8 गते आँखा स्क्रिनिङ क्याम्प स्थान क्षेत्रीय समाज भवन बैरघारी भिरकोट नगरपालिका 1 स्याङ्जा। तेस्रो दिन असार 9 गते कार्यक्रम क्याटारेक्ट सर्जरी क्याम्प स्थान गढौं प्राथमिक अस्पताल वालिङ नगरपालिका 9 स्याङ्जा।
2: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा ओइसो सुखन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आठ्यावा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परेम नुए तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यहीमरी तुरन्त खबर लना
3: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
4: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
6: ओएमजी श्रेया कसम तिम्रो यो नयाँ हेयर कट र कलर त एकदमै फायर छ त।

0: सुनत नस
1: समय को साथ में जितु सुनचांदी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4

0: सुमित ना, अरे हम लोग आने में एक बजे का छा
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

पहाड़ हिमाल भरी सेती काली तारी सातौं चंडी गरम आलम परिक्रमा गरी संस्कृति को जगेर्ना र कृषि व्यापार शिक्षा सबैतिर छाई रहोस् नेपाल।

एस आदि खोला खबर को साथ हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।